0: शुरू कर देते हैं अपन, शुरू कर देते हैं। चलो
1: ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः, ओम नारायणाय स्वाहा, इदं नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः स्वाहा, इदं माधवाय नमः। हस्तौ दर्शाय ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचिः। काले स्वस्ति तिलकम्, ओं मा स्वस्ति न इन्द्रो।

0: नशाने अभी
1: थोड़ा सा रुद्र सूक्त से चलाएंगे तो थोड़ा सा धारा पतली रखिएगा। ओम नमस्ते रुद्र
2: पात्र
1: नमस्ते रुद्र।

प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा नित्यं।

अपश्चाताद अपुरस्ताद अवधर्माद अवचरणाद अवचूर्णाद सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मामेष्टं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः।

0: ने की जय। श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी योगीराज की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय हो। माता की जय।
1: Om Sri Alakpurisha Mahadeva.
0: Ki jai.
1: Sri Sri Deveshwar Mahadeva.
0: Ki jai.
1: Om Bole Sri Deep Narayan Bhagavane.
0: Ki jai.
1: Sri Madhavananda Holy Guruji Sri Sata Gurudeva.
0: Ki jai.
1: Vishwa Guruji Paramahansa Maheshwarananda Yogiraj.
0: Ki jai.

0: ज्ञान की जय। देव दि देव श्री देव पुरी जी महादेवा की जय। राधे भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री हिंदू धर्म सम्राट श्री परमहंस स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देवा की जय। विश्व गुरु परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय।
1: Sridip Naren Bhagwan ki jai, Sridi Vishwar Mahadeva ki jai, Sri Satguru Swami Madhavananji Guru Deva ki jai, Vishwa Guru Chai Sri Swami Maheshwaranji Guru Deva ki jai.

0: बोले श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी महादेव की जय। हिंदू सनातन सम्राट परहंस स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परहंस श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री आलकपुरी जी महादेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति।

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, सत गुरुदेव की जय,
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय, श्री अलकपुरीश महादेवा की जय।

दीपनम सजति सर्वं संध्या दीपं सर्वसत्यम् शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर् नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद

सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, माता पिता गुरुदेव

0: ओ गुरुदेव
1: ओ गुरुदेव मैं
0: महाप्रभु जी,
1: महाप्रभु जी।
0: आप ही ब्रह्मा, यू आर द ब्रह्मा,
1: से ब्रह्मा
0: दैट ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर्स,
1: ब्रह्मा, který je stvořitel।
0: ब्रह्मा विष्णु, नो द गॉड विष्णु, मेनी मेनी टाइम्स मेनी मेनी, ऑल्सो लाइक वाट कॉल बी द कृष्णा।
1: Jsi Bůh Višnu a také ho známe pod jménem Krišna.
0: Áp hi Brahma, áp hi Višnu, áp ho Kailas Kevasi, and O Gurudev, you are also residing in the Kailas.
1: O Gurudeve, ty také přebýváš na Kailáši.
0: You are residing there.
1: Tam žiješ.
0: Áp ho Nárad, áp ho Sárad, áp ho Sés Sukrasi, áp ho Nárad, áp ho Sárad, áp ho Sés Sukrasi, áp ho hi, आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी। यू आर इज ब्रह्मा, आप विष्णु, एंड यू आर कैलाश, लिविंग इन द हिमालया इन कैलाश। आप हो नारद, ऑल्सो यू आर द नारद ऋषि,
1: सीता के नारद ऋषि।
0: आप हो सारद, and apo ses shukrasi, ses shukrasi is where this snake very big under the ocean, and there where Vishnu is residing.
1: Ses shukrasi je ten velký had pod oceánem a tam žije Vishnu.
0: Ses, and the ses means also what remains after all, but still there remains.
1: A ses je také to, co potom všem zůstane.
0: Áp ho dhyani, áp ho gyani, áp ho yog prakasi. Áp ho dhyani, o Mahaprabhuji.
1: O Mahaprabhuji.
0: Áp hi dhyani. You have meditation, you know that, O Devpuriji.
1: Máš meditaci, znáš to, O Devpuriji.
0: Áp ho gyani, you are the knowledge.
1: Si poznání.
0: Áp ho yog prakasha, and you are the light of the yogas.
1: Asi světlo yug.
0: Mahaprabhuji is saying to Devpuriji.
1: To říká Mahaprabhuji Devpuriji.
0: Áp ho dhyani, áp ho gyani, áp ho yog prakasi. आप हो देव सब देवी, आप हो सूर्य प्रकाशी, यू आर ऑल्सो माय लॉर्ड, यू आर द शक्ति,
1: मुई पाने से ताके शक्ति,
0: एंड यू आर ऑल्सो भक्ति,
1: अ भक्ति
0: देवी,
1: भक्ति देवी,
0: आप ही सूर्य प्रकाश, ओ देवपुरी जी, यू आर द सूर्य, द सन प्रकाश।
1: O Devpuriji, ty jsi také slunce.
0: Áp ho vedon ke gyata, áp ho bhakt urvasi. Áp ho vedon ke gyata, O Mahaprabhuji, you know the Vedas, you know the Vedas.
1: O Mahaprabhuji, ty znáš Vedy.
0: Áp ho bhakt urvasi. And all the bhaktas are in our heart.
1: A všichni bhaktové jsou v našich srdcích.
0: Áp ho vedon ke gyata, áp ho bhakt urvasi. Áp ho shant naam ke data, áp ho sat naam ke data. O Gurudev, you are the sat, the truth.
1: O Gurudev, ty jsi pravda.
0: Now, so from that truth name you are the data, O God.
1: té pravdy ty jsi.
0: Apho bhakt urvasi. And you are Gurudev in our heart.
1: A Gurudev jsi v našem srdci.
0: Urvasi is the heart.
1: Urvasi je srdce.
0: Apho vedon ke gyata. You are knower of the Vedas.
1: Znáš Vedy.
0: Apho bhakt urvasi. Apho sat naam ke data. And you are the name of the God. Everything you are giving us.
1: A jsi jméno Boží a všechno nám dáváš.
0: Sat naam ke data. Sat means the truth.
1: Sat je pravda.
0: Apho nij svarup ke gyata. And you are that of the gyata, the knowledge, knower.
1: I see znalec.
0: You are the form of the knowledge, gyata.
1: Jsi podobou poznání.
0: Namo, om, namo, prabhu, deep, pranama, brahmanand, urvasi. And about Brahmananji, it is Om Namo Prabhu Deep Pranam. So Om Mahaprabhuji, Prabhuji said, Pranam, salutation. Brahmananda Urvasi, Brahmananda, Brahmananda, Brahmananda. There you are residing, O my Devpuriji, Gurudev.
1: Takže přebýváš tam, můj Dev Puriči, můj Gurudeve.
0: Namo, om namo, prabhu dýpaya vinasi, apho brahma, apahi vishnu, apho kelas kevasi, apho narad, apho sarad, apho ses sukrasi, apho dhyani, आप हो ज्ञानी आप हो योग प्रकाशी आप हो देव सब देवी आप हो सूर्य प्रकाशी आप हो ब्रह्म विनिर्वाणी आप हो चहूं आपके वासी चहूं इन ऑल डायरेक्शंस यू आर देयर
1: सिर्फ ve všech směrech
0: आप हो वेदों के ज्ञाता आप हो भक्त उर्वासी आप हो सतनाम के दाता आप हो निज स्वरूप के ज्ञाता ओम नमो प्रभु दीप प्रणामा ब्रह्मानंद उर्वासी सत्य सनातन धर्म की देवादिदेव अलकपुरी जी महादेव की देवादिदेव देवेश्वर महादेव की परम आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय सत्य सनातन धर्म स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरि ओम
1: हरि ओम गुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय

परिजी महादेव की जय। देवादि देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद गुरुजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुजी गुरुदेव की जय। आज का नंद की जय। सब संत श्रमणी महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत सनातन धर्म की जय। मामल स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। मामल स्वामी फुलपुर जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की

0: की जय।
1: देवेश्वर महादेव की
0: जय।
1: मैथिलानंद भगवान की
0: जय।
1: सभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रसाद अब सब ग्रहण करें। आरती हो गई है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग प्रसाद करावें। बोलिए दीप नारायण भगवान की
0: जय।
2: की जय।

का भी हमला कर, और हमारे संगीत के गुरुजी भी रहे हुए अशोक जी चौहान को हमारे अपने पूरे टीम के साथ और करें। दिस इज जी चौहान, ही इज ऑल्सो माई टीचर व्हेन आई वाज यंगर एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल म्यूजिशियन, सो आई वुड रिक्वेस्ट हिम एंड हिज टीम टू बिगिन द नाइट विद सम ऑफ हिज भजन्स। वी हैव थ्री और फोर डिफरेंट सिंगर्स कमिंग अप फॉर द होल नाइट, सो यू विल नॉट बी बोर्ड।

कीबोर्ड देख लीजिए। वशिष्ठ नारायण भगवान की जय हो। जय हो देवेश्वर महादेव के इस पवित्र प्रांगण दरबार में और विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगीराज परम विभूषित परम पूज्य स्वामी महेश्वर नंदपुरी जी महाराज के इस पावन निष्ठा में अनंत साधु चित्त सत्संगी इस पंडाल में विराजित हैं और हम सत्संग की अमर गंगा में बाबूजी महाराज और भारत के सब संत वृंद मुनिजनों के पावन सानिध्य में सत्संग का आनंद ले रहे हैं। मैं आप सभी से विनंती करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर जयकारे लगाएं और बड़े प्रेम से और पूरी ऊर्जा के साथ में जयकारे लगाएं। जितने भी भक्त विराजे हैं जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है बड़े प्रेम से अपनी आवाज उठाकर दोनों हाथ उठाकर बलि श्री दीप नारायण भगवान की जय हो। जय हो श्री अलक पुरुष महादेव की जय हो। श्री देवेश्वर महादेव की जय हो। हिंदू धर्म सम्राट स्वामी माधवानंद जी गुरुदेव भगवान की परमहंस योगीराज विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद

बहुत भाव से बाबूजी महाराज के सभी भक्त और संतों ने इस सत्संग को अपने मधुर और संतों की वाणियों से आगे बढ़ाया है। आज के इस विषय को देखकर और आप सभी के हृदय में अनंत आनंद को देखकर मुझे एक नारायण दास जी महाराज की वाणी याद आ रही है, गुरु बधावे के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां कहीं भी आपको लगे कि हाँ मुझे भी गाना चाहिए, मुझे भी आनंद लेना चाहिए, वह अपने स्वतंत्र मन से बड़े प्रेम से आनंद लीजिएगा। लीजिए बाबूजी महाराज आज्ञा ले आसम गुश्राम संगीत संघ का एक दयाद हूँ और बड़ा भाग्य और आप सभी के चरणों

0: गुरुदेव महाराज के जब, और वो भी ये आषाढ़ी पूर्णिमा, प्रणाम साहब, आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव भगवान के दर्शन और ये संतों का पावन सानिध्य और ये आनंद की जो लहर हम सभी के हृदय कमल में उमड़ रही है, उसी को देखकर अपने दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से,
1: ओ वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं,
0: आज से सुंदर अवसर मिलेगा नहीं आपको, आज जो अपने गुरुदेव के समक्ष बैठकर जो उनको न्योछावर होने वाले हैं, जो उनपे वारी जाने वाले हैं, अपने दोनों हाथ उठा लीजिए बड़े प्रेम से गुरुदेव के लिए।

हरवाड़ी भक्ताज आप अग्नि तैयारी आकल हरवाड़ी अपन दो हाथ उठा कर पेलड़ी किनो याद भरतो तो अटावत सुन को आज हां गुरुदेव रे जितना नजदीक ना उतो आज आनंद है आइए बड़े प्रेम से दोनों हाथ उठाइए

जितने भी भक्त आज के वक्त विराजे हैं, गुरुदेव पावन समय आप और हम सभी भक्त मिलके गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये भजन सुनाकर आज की भक्ति जगा रहे हैं। एक बार सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, बड़े भाव और प्रेम के साथ में जोरदार जय घोष लगाओ एक बार दोनों हाथ उठा के।